समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

शिवलीलामृत सुरसफार श्रवण करवी शिवद्वारी मगतिणे सर्वग्रंथ गुरुमुखे ऐकिले प्रेमयुक्त श्रवण भक्ति अवघ्यात श्रेष्ठ ऐसे।

तीर्थाटन श्रम बहुत श्रवणे सार्थक सर्वही जासी न मिले सत्समागम श्रवण त्याने करू जावे तीर्थाटन न लगे अष्टांग योग साधना

विभुत्व साक्षित्व सर्वज्ञत्व पै या चिन्ही मंडित शुद्ध शंकर परिपूर्ण ब्रह्मानंद माया चक्र चालक शुद्ध त्रिविध भेद रहित जो भक्त रक्षणार्थ सगुणा

शोधुनी भस्म करी तसे मस्तकी हस्त ठेविता तत्काल भस्म होय न लगे बेळ ऋषि चक्र शोधुनी सकळ भस्म करी एकदाची छप्पन्न देश शोधित चमू सहित भूभुज समस्त भस्म करी क्षणात थोर अनर्थ बो

अक्षय अभंग सर्वदा शिवलीलामृत ग्रंथ प्रचंड स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड परिसोत सज्जन अखंड।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं रविशंकर शर्मा जी के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की गीत रचना। स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन, प्रस्तुति भक्ति सुधा।
1: दैनंदिन आध्यात्मिक आराधना तसच विविध पोथी पारायणे यांचा नित्य लाभ घेण्यासाठी भक्तिसुधा यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करा।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

उपजे अजगर हो न बैसे नमस्कार के लिया वाचून वंश वृक्ष हो यतो कथे त बोले भल त्या गोष्ठी तो मंडुक हो य सदा।

शिवलीलामृत सुरसफार श्रवण करवी शिवद्वारी मगतिणे सर्वग्रंथ गुरुमुखे ऐकिले प्रेमयुक्त श्रवण भक्ति अवघ्यात श्रेष्ठ ऐसे।

तीर्थाटन श्रम बहुत श्रवणे सार्थक सर्वहि जासी न मिले सत्समागम श्रवण त्याने करू जावे तीर्थाटन न लगे अष्टांग योग साधन।

ये धवा चिता भस्म आणो नी देई जे नित्य नूतन आणी भस्म हीच सेवा करी उत्तम ऐसी आज्ञा होता परम भस्मासुर संतोषला।

श्मशानी पंचभूते तत्वा सहित पिंड ब्रह्मांड जाळोनी समस्त सर्व निरसूनी जय उरत स्वात्म सुख भस्म तेची ब्रह्मानंद सुख सोज्वल।

शोधुनी भस्म करी तसे मस्तकी हस्त ठेविता तत्काल भस्म होय न लगे बेळ ऋषि चक्र शोधुनी सकळ भस्म करी एकदाची छप्पन्न देश शोधित चमु सहित भूभुज समस्त भस्म करी क्षणात थोर अनर्थ वोढ।

अक्षय अभंग सर्वदा शिवलीलामृत ग्रंथ प्रचंड स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड परिसोत सज्जन अखंड

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं रविशंकर शर्मा जी के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की गीत रचना। स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन, प्रस्तुति भक्ति सुधा।
1: दैनंदिन आध्यात्मिक आराधना तसच विविध पोथी पारायणे यांचा नित्य लाभ घेण्यासाठी भक्तिसुधा यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करा।